0: மிகவும் பாங்கு வாக்கு கூடாவுதா தேவையில பாகர் விவாக மெட்ரிக் மானியத்தாலே தேரை கிஷோர் கிஷோரிலை பால் விவாக தர்ஃப தக்கிலி ரகேகு ச
1: பால் விவாக ரோக்ன தோஷ் ஹோய்னா விஸ்வாஸ் ஆவசியக் ச
0: छोरा छोरी सँग साथी जस्तै संवाद गरौं वृहत यौनिकता शिक्षा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सही जानकारी उपलब्ध गराऊ र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं
1: बाल विवाह रोकौं छोरा छोरीको सपना जगाऊ शिक्षित सक्षम र जिम्मेवार पुस्ता निर्माण गरौं जनहितका लागि महिला सशक्तिकरण स्रोत केन्द्र ओआरसी सामुदायिक रेडियो उदयपुर र सीआईएम सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएम तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएम खबर डट कम तथा मोबाइल एप सीआई सुन्न कर्जा विस्तार

सुशीला वैद्यद्वारा सफल उपचार भइरहेको छ। सम्पर्क लेजर थेरापी क्लिनिक लगनखेल ललितपुर लगनखेल पोलिक्लिनिक भवनमै। फोन नम्बर 01-5452-352 मोबाइल 98510-600-69।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 10 p.m.